जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब ब्रह्म मिटेंगे। ब्रह्म तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट जाता।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4। प्रस्तुत करेंगे RJ किरणी। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। निर्देशन भारत सोपोरी।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। लेकर आई हूँ रेट्रो हिट्स का एक और नया अंक। इस अंक में आज हम बात करेंगे विश्वास की और उसी पर आधारित आपको कुछ गाने भी सुनाएंगे। विश्वास। विश्वास है एक आईना, जो टूट जाए तो मुश्किल है जुड़ना। दिल से जो एक बार उतर जाए तो फिर मुश्किल है संभालना।

कौन हो। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपुरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: अपना बिजनेस एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सभी को मेरी नमस्कार। मैं आपकी रेडियो सखी नेहा धाकड़ लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक नई कहानी जो सिखाएगी कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और कभी भी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहाँ एक छोटा सा जलाशय था। उसमें एक मेंढक रहा करता था जो हमेशा बहुत ही उदास रहता था और अकेला बैठकर मन ही मन सोचता रहता था। उसकी उदासी का मुख्य कारण यह था कि मेंढक का पूरे जंगल में कोई भी दोस्त नहीं था जिसके साथ वो खेल सके, मस्ती कर सके और अपनी बातें कर सके। एक दिन उसी जलाशय के पास एक पेड़ के नीचे से चूहा निकला। चूहे ने मेंढक को पूछा, दोस्त क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। मेंढक ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं, अपना दुख सुख बता सकूं। इतना सुनते ही चूहे ने उछलते हुए जवाब दिया, अरे आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा। इतना सुनते ही मेंढक बहुत खुश हुआ। दोस्ती होते ही दोनों घंटों तक एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। मेंढक जलाशय से निकलकर कभी पेड़ के नीचे बने चूहे के बिल में चला जाता तो कभी दोनों जलाशय के बाहर बैठकर काफी बातें करते। दोनों के बीच की दोस्ती दिनों दिन काफी गहरी होती गई। चूहा और मेंढक अपने मन की बातें एक दूसरे के साथ साझा करने लगे। होते होते मेंढक के मन में हुआ कि मैं तो अक्सर चूहे के बिल में उससे बातें करने जाता हूँ, लेकिन चूहा मेरे जलाशय में कभी नहीं आता। ये सोचते सोचते चूहे को पानी में लाने की मेंढक को एक तरकीब सूझी। चालाक मेंढक ने चूहे से कहा, दोस्त हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक दूसरे की याद आते ही हमें आभास हो जाए। चूहे ने हामी भरते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या। दुष्ट मेंढक फटाक से बोला, एक रस्सी से तुम्हारी पूंछ और मेरा एक पैर बांध दिया जाए तो जैसे ही हमें एक दूसरे की याद आएगी तो हम उसे खींच लेंगे जिसे हमें पता चल जाएगा। चूहे को मेंढक के छल का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए भोला चूहा एकदम इसके लिए राजी हो गया। मेंढक ने जल्दी जल्दी अपने पैर और चूहे की पूंछ को बांध दिया। इसके बाद मेंढक ने एकदम पानी में छलांग लगा ली। मेंढक खुश था क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई। वहीं जमीन पर रहने वाले चूहे की पानी में हालत खराब हो गई। कुछ देर छटपटाने के बाद चूहा मर गया। ऊपर आसमान में उड़ता बाज यह सब देख रहा था। बाज ने जैसे ही पानी में चूहे को तैरते हुए देखा तो बाज तुरंत उसे मुंह में दबाकर उड़ गया। दुष्ट मेंढक भी चूहे से बंधा हुआ था, इसलिए वो भी बाज के चंगुल में फंस गया। मेंढक को पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो सोचने लगा, आखिर वो आसमान में उड़ कैसे रहा है। जैसे उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर मेंढक सहम गया, लेकिन चूहे के साथ साथ बाज ने मेंढक को भी खा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों का नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वालों को खुद भी नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसलिए कभी भी दुष्ट लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई स्वरचित कहानी है तो आप हमें भेज सकती हैं। अगर वो कहानी हमें अच्छी लगी तो हम उसे अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010, 7056413010। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: विस्तार रेडियो आपके जीवन का प्रवाह।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
3: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
4: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधार रही है।
3: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
4: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
3: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
4: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
3: गणपति बप्पा मोरिया।

आपने ट्यून किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपुई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये व्यस्त थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है, कार्यक्रम रंगमंच की ओर में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर, सिर्फ रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर।

जानेमन, क्या किसी इंसान की खामोशी में पूरी एक सदी का दर्द सुना जा सकता है? क्या किसी की आंखों का खालीपन इतना भारी हो सकता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए? नमस्कार, मैं मानव मेहरा, द एक्टर्स आई के एपिसोड 6 में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। एक्टिंग के सफर में आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं जहां व्याकरण यानी कि ग्रामर खत्म हो जाता है और सिर्फ जज्बात बसते हैं। आज की मास्टर क्लास सिनेमा के इतिहास की उस मल्लिका के नाम है जिन्हें दुनिया ट्रेजेडी क्वीन कहती है, लेकिन जो असल में अभिनय की देवी थी, मीना कुमारी जी। और आज हम उनके जिस किरदार को समझने का प्रयास करेंगे वो है 1962 की कालजयी फिल्म साहिब, बीबी और गुलाम की छोटी बहू। एक एक्टिंग स्टूडेंट के तौर पर जब आप छोटी बहू को स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? एक अमीर जमींदारनी, एक शराबी औरत या एक मजबूर पत्नी? नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक सोने के पिंजड़े में तड़पती हुई एक खूबसूरत मौत है। आइए मीना जी के अभिनय की उन परतों को यानी कि लेयर्स को खोलते हैं जो इस परफॉर्मेंस को एक टेक्स्ट बुक बना देती है। पहली मास्टर क्लास, नशे की एक्टिंग। इसे एक्टिंग की दुनिया में सबसे मुश्किल क्राफ्ट माना जाता है। अक्सर नए एक्टर्स नशे को लाउड कर देते हैं, वो बेवजह लड़खड़ाते हैं, जोर से हंसते हैं, शब्दों को चबाते हैं, लेकिन मीना जी की एक्टिंग को डिकोड कीजिए। छोटी बहू मदिरा यानी कि शराब शौक से नहीं पी रही, वो उसे जहर की तरह पी रही है, सिर्फ इसलिए ताकि उसका पति उस रात कोठे पर ना जा पाए। यहां मंशा फिजिकल नहीं, इमोशनल है। मीना जी की आंखों की पुतलियों को ध्यान से देखिए। शराब पीने के बाद उनकी पलकें भारी हो जाती हैं, लेकिन वो जानबूझकर अपनी आंखें चौड़ी करके खोलने की कोशिश करती हैं। वो अपने शरीर के ढीलेपन को अपनी इच्छा शक्ति से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही। असली नशे की एक्टिंग यही है। अ ड्रंकन पर्सन ऑलवेज ट्राइज टू एक्ट सोबर, यानी कि

में भारी हार, लेकिन मीना जी के चलने और बैठने के अंदाज को ऑब्जर्व कीजिए। वो उन गहनों को अपनी ताकत की तरह नहीं पहनती हैं, वो उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों की तरह पहनती हैं। जब वो अपना भारी हार छूती हैं, तो उनके हाथ में एक अजीब सी थकावट होती है। उनका हर जेवर बस खाली हवेली में उनकी घुटन को बढ़ा रहा है। एक एक्टर को यह सीखना चाहिए कि आपका कॉस्ट्यूम सिर्फ पहनने के लिए नहीं होता है, वो आपके किरदार की साइकोलॉजी का हिस्सा होता है। क्या आपके कपड़े आपको आजादी दे रहे हैं या आपको कैद कर रहे हैं? अब ध्यान देते हैं तीसरी लेकिन सबसे अहम बात पर, और वो है वॉइस मॉड्यूलेशन, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं आवाज का उतार चढ़ाव। मीना जी की आवाज में कुदरती तौर पर एक ट्रेजेडी थी, लेकिन छोटी बहू के किरदार में उन्होंने अपनी आवाज को गले से नहीं बल्कि अपने सीने से, यानी कि चेस्ट रेजोनेंस, अपनी नाभि से निकाला है। जब वो भूतनाथ से पूछती हैं, क्या मैं सुंदर नहीं हूं भूतनाथ, इस डायलॉग में जो क्रैक है, जो गले का रुंधना है, वो तकनीकी नहीं, वो सेंस मेमोरी है। शब्द बहुत धीरे से बोले गए हैं, वो फुसफुसाहट की तरह, जैसे कोई अपने ही अंदर किसी से बात कर रहा। एक एक्टर को ये कला आनी चाहिए कि जब दर्द बहुत गहरा हो तो आवाज का वॉल्यूम नहीं बढ़ता, आवाज की गहराई बढ़ती है। और अब वो सीन जो एक्टिंग की दुनिया का माउंट एवरेस्ट है, वो गाना याद है ना, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया। इस गाने में मीना जी की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखिए। एक जमींदारनी, एक खानदानी औरत जमीन पर बैठी अपने पति के पैरों को कस कर पकड़ा हुआ है उसने, वो गिड़गड़ा रही है। लेकिन ध्यान से देखिए, उस गिड़गड़ाने में, इस जमीन पर गिरने में भी एक ग्रेस है। उन्होंने अपनी डिग्निटी खो दी है, लेकिन अपनी शराफत नहीं खोई। वो जोर से रोकर तमाशा नहीं कर रही, उनके आंसू उनकी बेबसी हैं, उनकी शिकायत नहीं। एक ही फ्रेम में एक औरत का सबसे ऊंचा गुरूर और उसकी सबसे गहरी कमजोरी, दोनों को एक साथ पर्दे पर जीना, ये सिर्फ मीना कुमारी ही कर सकती थी। तो भाई लोग, मीना कुमारी जी ने हमें सिखाया कि महान अभिनय दिमाग से नहीं होता है, वो आपकी आत्मा के उन कोनों से होता है जिन्हें आप दुनिया से छुपा कर रखते हैं। और अब भाई लोग, आज की मास्टर क्लास का होमवर्क, और यकीन मानिए ये आज तक का सबसे मुश्किल होमवर्क होने वाला है। हम इसे कहेंगे द सोबर ड्रंक मोनोलॉग, यानी कि होश में नशे का एकालाप। अपना कैमरा ऑन कीजिए, आपको कोई एक साधारण सा पैराग्राफ पढ़ना है। मान लीजिए आप किसी को अपनी दिनचर्या बता रहे हैं या रोज आप क्या करते हैं, ये सब बता रहे हैं, लेकिन सबटेक्स्ट ये है कि आपने बहुत ज्यादा शराब पी रखी और आप सामने वाले से ये छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप नशे में हैं। आपको लड़खड़ाना नहीं है, जबान नहीं लड़खड़ाने देनी, सिर्फ अपनी आंखों से, अपनी पलकों के भारीपन से और अपने शब्दों को हद से ज्यादा साफ बोलने की उस एक्स्ट्रा कोशिश से यह जताना है कि आपके अंदर कितना नशा है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैमरे पर पकड़ने की कोशिश कीजिए, इसे रिकॉर्ड कीजिए और मुझे कमेंट्स में आकर जरूर बताइएगा कि क्या आप अपनी ही आंखों को धोखा दे पाए। आज के लिए बस इतना ही, हमसे जुड़े रहें और अपनी कला की इबादत करते रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और

ये सफर है फिल्मी गीतों का, तय करेंगे आप अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। नमस्कार, आदाब। सहर होते ही कोई हो गया रुखसत गले मिलकर, फसाने रात की कहती रही टूटी हुई।

दर्द जगता है अक्सर दिल के इस नाजुक कोने में, जहां कभी प्यार पलता था सिर्फ तुम्हारे लिए। जहां से तुम्हारा गुजर हुआ, वहां के रास्तों को तुमने महकाया, वहां की वीरानी को गुलजार किया, और वहां के फासलों को तुम्ही ने मिटाया। तुम्ही ने दर्द दिया और तुम्ही ने दवा। अब यहां हमारे तन्हाइयां पलती हैं, थाम लेती हैं रुस्वाइयां दामन, और तुम्हारी याद में ये आंखें अश्कबार रहती हैं। जगता है दर्द अक्सर इस दिल के कोने में।

क्यों लगता है बरसों से शनासाई है, ये मखमली मौसम बेताब है तुम्हारे पैरों की चुभन के लिए। बदलते रुत सरगोशियां करती हवाएं, तुम्हारे दुपट्टे की खुशबू अब एहसास है मेरा। क्या तुम्हें याद है तपती दोपहरी के दामन में, यहां की फिजाओं को इन पानियों में हम बहाया करते थे, इन सूफियाना धुनों में आवाज से आवाज मिलाना, यही हमारी

ये मौसम है तुम्हारी यादों का, सावन का ही महीना था जब तुम लौट आए थे नंगे पांव, भीग चुके थे तुम्हारे कब कपाते होंठ, चेहरे की रौनक और सादगी से भरा कदे आदम जिस्म, धड़कने उदासी में लिपटी हुई थी। शायद अपना दर्द बयां कर रही थी।

मेरी पनाहगाहों में जो तुम ठहरते ता उम्र, शायद तुम्हारी यादों का मौसम खिल उठता मौसमी बहार की तरह।

लब पे है नाम तेरा और जिक्र तेरा ही होता है। इन पानियों में लहरें उठती तो हैं पर अक्स बिखरती नहीं। ये साहिल रहते हैं बेताब इन पानियों को छूने के लिए। यहां शाम होते होते मुरझा गए अब ये भीगे मौसम और छिप गए चुप हो गए बुलबुल। इन काली खामोश घटाओं ने घेरा है सितारों को चांद को मेरी परछाई को और तुम्हारी मुस्कान को।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
1: पेश है एक खास कार्यक्रम मोहम्मद रफी पर, प्रस्तुत करेंगे रमेश मराठा।
2: हजारों साल नरगिस अपनी बीनूरी पिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदबर पैदा। ये आवाज सुन रहे हैं आप, जरा पहचानिए तो, ये आवाज आज तलक आपके कानों में रस घोलती आ रही है, आपके दिलों को करार, रूहों को सुकून पहुंचाती आ रही है। ये सदाबहार आवाज किसी तारुफ तारीफ की मोहताज नहीं है, ये आवाज अपनी मिसाल आप है। गर्ज बेमिसाल है, लाजवाब है, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और

भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और

बॉम्बे फिल्म नगरी के एक निर्माता नजीर ने सन 1944 में उनकी आवाज सुनी और फिल्म गांव की गोरी में रफी साहब को गाने की दावत दी। उसके बाद मौसीकार नौशाद अली ने फिल्म पहले आप में आपको एक कोरस में पेश किया।

1947 में फिरोज निजामी ने फिल्म जिगनू में मलिके तरन्नुम नूर जहां के साथ आपको गाने का मौका फराहम किया। उसके बाद ये गुलूकार पीछे न देखते हुए आगे की तरफ बढ़ता गया, कहता गया, मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत आगे।

1948 में फिल्म प्यार की जीत का यह गीत एक दिल के टुकड़े हजार हुए मकबूल हुआ। फिल्म बड़ी बहन का गीत मोहब्बत के धोखे में कोई न आए मौसिकी के शायकीन महफिल की

सन 1953 में जब फिल्म बेजू बावरा रिलीज हुई तो रफी की गाय हुई दो भजनों ने कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया। इस तरह से यह बात सिद्ध हुई कि रफी साहब जात पात मजहब मिल्लत की बंदिशों से ऊपर उठकर फन मौसीकी की खिदमत

0: शास्त्रीय संगीत में आपका एक मुनफरिद मुकाम था। सन 1950 से सन 1960 तक आपका दौर गायकी की दुनिया में बेताज बादशाह की तरह रहा।
1: रफी साहब के साथ बहुत सारी यादें होंगी जो आप हमारे सुनने वालों तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाना चाहेंगे।
2: हाँ भाई, रफी साहब मेरे भाई की तरह थे, बड़े अच्छे दोस्त भी थे, मेरे आइडियल भी थे। वो न सिर्फ बड़े अच्छे कलाकार थे, बहुत सुरीले गायक थे, बल्कि बड़े ही खूबसूरत इंसान थे। तो उनका दिल बिल्कुल इतना मोम की तरह था, कभी वो नाराज होते हुए उन्हें मैंने नहीं देखा। इतने बरसों से साथ रहा, कई प्रोग्राम उनके मैंने कंपेयर किए, कई बार बातचीत के लिए गया, मिलने गया, कभी मैंने उनको नाराज होते हुए नहीं देखा। हमेशा बड़ी इंकसारी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ वो सबसे मिलते रहते थे, और बड़े पाक इंसान थे। न सिगरेट, न शराब, न कहीं उल्टा सीधा बोलना, कुछ नहीं, हमेशा शराफत और इज्जत के साथ वो बात करते थे लोगों से, और बड़ी नरमी से बात करते थे, हमेशा मुस्कुरा कर बात करते थे। इसलिए वो हमेशा लोगों के दिलों में बस जाते थे। आवाज़ के बारे में क्या कहें, वो तो थे ही बहुत ही सुरीले और बहुत ज़बरदस्त गायक, हर तरह का गाना बड़ी अच्छी तरह निभा लेते थे। और मैंने इत्तेफाक से कई ऐसे शोज भी कंपेयर किए जिसमें और भी कई लोग साथ में गा रहे होते उनके, यानी किशोर या मुकेश या लता और आशा वगैरह सब कई साथ मिलकर भी कई शोज होते थे। तो फिर भी मैं देखता था कि सुरीले सभी होते थे, मन्ना डे भी, लेकिन रफ़ी की जो पॉपुलैरिटी थी वो कुछ और ही थी। तो वो जब गाना शुरू करते थे झूम कर, तो जब सब बच्चे सब खड़े होकर झूमने लगते थे। एक बात और थी कि जब भी वो जाते थे किसी शो में, तो बड़े साहब वो इंसाफ पसंद थे। मतलब ये कि वो हमेशा कहते थे, मुझे जिस क्लास में प्लेन में तुम ले जाते हो या ट्रेन में ले जाते हो, उसी क्लास में तुम मेरे सारे यूनिट को ले जाओ। ऐसा ना हो कि मुझे फर्स्ट क्लास में रखो, बाकी को सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में रखो। होटल में भी वो कहते थे, जिस होटल में मैं रहूंगा उसी होटल में सबको रखिए। यूनिट उनके साथ काम करने वालों का वो भी उन पर फिदा था और बहुत इज्जत करता था उनकी।
1: अमीन साहब, कोई ऐसा इंसिडेंट जो बिल्कुल आपके दिल के करीब है रफी साहब के साथ?
2: इंसिडेंट ऐसा रफी के साथ एक ही बड़ा अजीब सा इंसिडेंट रहा, या यूं कहिए कि नहीं रहा, वो ये था। तो मैंने करीब करीब सभी लोगों को इंटरव्यू किया, एक दो तीन लोग बड़े जो मेरे करीब थे वही रह गए, उनमें से एक थे रफी। अब रफी क्यों रह गए कि मैं कई बार उनके पास जाता था कि रफी भाई, मेरा प्रोग्राम चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इसमें बोलें। तो कहते थे, नहीं यार, वो क्या है कि मैं तो गाने वाला हूँ, क्यों बुलवाते हो मुझसे खामखा, तुम एक काम करो
1: जी।
2: जब मैंने बहुत जिद की तो कह रहे, तुम एक काम करो, तुम कोई ऐसा प्रोग्राम करो जिसमें मुझे बोलना ही ना पड़े। तो मैं उलझन में पड़ गया कि यार ये कैसी बात है। तो खैर वह सोचता रहा। तो इसमें कई बरस बीत गए, और फिर मैंने कोशिश की कि कहीं अगर मेरे पास मेरे लिए नहीं बोलते तो किसी और के लिए बोला होगा। तो सारी दुनिया से मेरे दोस्त बहुत हैं ब्रॉडकास्टर्स, कई सारी दुनिया में फैले हुए। तो मैंने कोशिश की कि रफी का कोई इंटरव्यू मेरे हाथ लग जाए
1: जी।
2: तो कई लोगों ने इंटरव्यू भेजे रफी के, लेकिन उसमें यही था कि वो हाँ हूँ, बहुत अच्छा, हाँ मजा आया, बस इतना बोलकर वो रुक जाते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। बस ज्यादा से ज्यादा एक 25 सेकंड या 20 सेकंड के जुमले मुझे मिल जाते थे, तो एक दो मैंने बजाए, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो आखिरकार मैं उनके पास गया एक रोज के, रफी भाई ये आपने उलझन में डाल दिया, आप कैसे करें आपको इंटरव्यू। कहने लगे, सीधी सी बात है, तुम ऐसा सवाल करो जिसका जवाब मैं गा कर दे दूंगा
1: जी।
2: मैंने कहा चलो डन, हो जाएगा। और मैं लग गया घर आकर उसके बाद उस टाइप का इंटरव्यू प्लान करने में, लेकिन तब तक बहुत बरस बीत चुके थे, उनकी तकदीर ने मुंह फेर लिया और वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो उसे कभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इत्तेफाक से एक हुआ ये था कि एक बार मैं दादा बर्मन की मौत पर तमाम बड़े बड़े संगीत सितारों का इंटरव्यू ले रहा था गीतमाला के लिए, तो सबको रिकॉर्ड किया। रफी साहब को रिकॉर्ड करने मैं गया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो हुई उन्होंने स्टूडियो से बाहर आकर की ओपन एयर में। एक तो कुछ बोले नहीं ज्यादा, दूसरे वो कुछ वहाँ कुत्तों की आवाज आ रही थी भौंकना, और कौओं की आवाजें आ रही थी, तो मैंने उसको इंटरव्यू थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, वो क्रैप कर दिया और नहीं बजाया
1: जी।
2: मगर उन्हीं दिनों मेरे भाई साहब का, हमीद भाई का इंतकाल हुआ था, तो मैं ज्यादा अटेंड नहीं करवा रहा था। रफी साहब का ये प्रोग्राम बाकी लोगों की आवाजें भर के मैंने रिकॉर्डिस्ट को दे दिया कि चलो इसको मिक्स करके तुम भेज देना रेडियो सलोन। तो हुआ ये था, जिसका बाद में मुझे पता चला कि मेरे राइटर जो थे रियाज सैयद साहब, बहुत अच्छे काबिल राइटर थे, तो मेरी गैर मौजूदगी में वो गए रफी साहब के घर और कहने लगे साहब अमीन साहब तो आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मैं गुजारिश करता हूँ थोड़े कुछ जुमले बोल दें आप दादा बर्मन के बारे में, तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका
1: जी।
2: तो उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया और वो रियाज साहब वापस लाकर मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने रिकॉर्ड इसको भी दिया, और वो इंटरव्यू उनका ट्रिब्यूट टू बर्मन दादा वो ब्रॉडकास्ट हुआ, जो मुझे जिसका पता ही नहीं चला कई वर्षों बाद तक। तो वही एक मेरी अपनी रिकॉर्डिंग में बस वही एक चीज मेरे पास है रफी की कही हुई, बर्मन दादा और जय किशन और मदन मोहन जैसे लोग इस दुनिया से जाते रहे तो हमारा संगीत तो सुना हो जाएगा, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा।
1: अमीन साहब, रफी साहब का कोई ऐसा गाना जो रफी साहब के दिल के बिल्कुल करीब था?
2: भाई एक गाना है, वैसे तो उनके कई गाने मुझे बहुत पसंद हैं, मसलन गाइड के बहुत गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन एक गाना जो उनके दिल के भी करीब हो और मेरे दिल के भी करीब उनकी याद आते आते हुए, वो गाना है रोशन साहब के म्यूजिक में फिल्म चित्रलेखा का
1: जी।
2: के मन रे तू काहे न धीर धरे, और एक एक जुमला उसमें बड़ा अच्छा था, एक एक एक पंक्ति एक मिसरा साहर ने लिखा था कि कोई न संग मरे, तो ये हमें हमेशा इत्मीनान दिलाता है कि भाई मौत तो आनी है सबके लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ जिंदगी में कि मौत के बाद भी हमारी याद जिंदा रहे, और यही बात रफी साहब ने कायम रखी अपने जाने के बाद भी। आज भी उनके गीत बजते हैं और हम उन्हें सुनते हैं और खुश होते हैं और अपने जीवन में रस खोलते हैं, और वो सुकून आता है उनकी आवाज़ से कि हाँ भाई एक इंसान था जो नेक भी था, शरीफ भी था और सुरीला भी था, और हमारे दिल में आज तक बसा रहा है और हमेशा बसा रहेगा।
1: रफी साहब ने लगभग हर संगीतकार के साथ काम किया, अनिल बिस्वास, श्याम सुंदर से लेकर हुसन लाल भगतराम, नौशाद से लेकर एस डी बर्मन, मदन मोहन से लेकर ओ पी नैयर, शंकर जयकिशन से लेकर कल्याण जी, आनंद जी, रवि से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन से लेकर बप्पी लहरी तक।

कुछ गीत रफी ने इस तरह से गाए जिनमें उम्र की कोई बंदिश नहीं थी। जैसे तस्वीर बनाता हूं फिल्म दीवाना से। बड़ी देर भाई फिल्म बसंत बहार से। ऐसे तू न देखो फिल्म तीन देवियां से। सुहानी रात ढल चुकी फिल्म दुलारी से। मन मोरा बावरा फिल्म रागनी से। न किसी की आंख का नूर हूं फिल्म लाल किला से। जो बात तुझ में है फिल्म ताजमहल से। रोशन तुम्ही से दुनिया फिल्म पारसमनी से। फिर वो भूली सी याद फिल्म बेगाना से।

रफी साहब में एक खास बात यह भी थी कि वो अपनी आवाज को किसी भी सांचे में डालने की, किसी भी रस में पेश करने की सलाहियत रखते थे। खाओ शहनशाही जज्बात दिलीप कुमार हो या मस्ताना देव आनंद, उछलता कूदता शम्मी कपूर हो या पारंपरिक भक्ति रस में डूबा हुआ भारत भूषण, हास्य रस में नहाया हुआ जॉनी वॉकर या महमूद हो, गरज यह है कि रफी ये तमाम सलाहियतें रखता था।

ये सही है कि मोहम्मद रफी आज नहीं है, लेकिन उसकी आवाज आज भी कई संगीत प्रेमियों की जीने का सहारा बन चुकी है। कई नए कलाकारों के लिए मशले राह साबित हुए हैं और उन्होंने रफी साहब के अंदाज को अपना कर अपना लक्ष्य तय किया है।

0: सन 1971 में रफी साहब गायकी की दुनिया में सरफिरिस्त रहे और इसी साल आप हज पर चले गए।
1: खुदा अपने वलियों से होता है राजी।
0: हज के फराइज अंजाम देने के बाद मौसीकी की दुनिया को अलविदा किया और आप अपने फर्जंद के साथ लंदन में कयाम करने लगे। इस फनकार की गैर हाजिरी को सामीन ने बर्दाश्त नहीं किया और रफी को गायकी की दुनिया में वापस लाने में कामयाबी हासिल की।

मोहम्मद रफी ने चंद एक ममालिक को छोड़ सारी दुनिया का दौरा किया। रफी न सिर्फ एक महान गायक कलाकार ही थे बल्कि अजीम शान शख्सियत के मालिक भी थे। वो सादा नरम तबीयत और खुदा का खौफ रखने वाले इंसान थे। वो फन

रफी साहब ने 36 सालों में तकरीबन 26,000 मुख्तलिफ हिंदुस्तानी भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। आपको 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और आपने पद्मश्री एजाज भी हासिल किया।

महफिल चाहे तंज मिजाह की हो या दर्द वालम की, चाहे इश्क आशिकी या सूफियाना महफिल, रफी साहब हर महफिल को अपनी मधुर आवाज से सरशार करते रहे। रफी साहब जैसे कलाकार एक ही बार हयात पाते हैं।

0: रफी ने अपने जमाने के लगभग सभी को सिंगर्स के साथ काम किया। लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, शमशाद बेगम, सुरैया, मीनू परशोत्तम और सुलक्षणा पंडित।
1: तुम अकेले तो कभी बाग में जाए।
0: और ये सभी गाने मकबूल भी

0: आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी पर मबनी यह प्रोग्राम, प्रस्तुत करता रमेश मराठा।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम फिल्मी किस्से, प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार, निर्देशन भारत सुपोरी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से में। इस कार्यक्रम में हम हर मर्तबा बात करेंगे किसी भी एक गोल्डन ईरा मूवी के बारे में और जानेंगे उनके अनकहे किस्से और सुनेंगे उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे 1970 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में, जिसने 2020 में अपने 50 साल पूरे किए हैं। वह फिल्म है आन मिलो सजना, जिसमें लीड रोल में सुपरस्टार राजेश खन्ना और आशा पारेख। इस फिल्म के निर्देशक थे मुकुल दत्त, फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और कंपोज किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनाता हूँ इस फिल्म का एक गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, कोई नजराना लेकर आया है।

0: गीत तो था बहुत मधुर। अब गीत से मुझे इसी फिल्म के एक और गाने का किस्सा याद आया। इस फिल्म में एक गाना है अच्छा तो हम चलते हैं। इस गाने के आखिरी छंद सूर्यास्त के समय शूट किया जाना था, इसलिए सभी जल्दी में थे और हड़बड़ी में काका यानी राजेश खन्ना और आशा पारेख दोनों एक दूसरे की पंक्तियां गाने लगे और बाद में इस किस्से को याद कर खूब हंसे। तो अब गाने को याद कर ही लिया है, इसे सुन भी लेते हैं किशोर कुमार की सुरीली आवाज में।
1: अच्छा

अच्छा तो हम चलते हैं। अरे नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आपको एक और किस्सा जरूर सुनाने जा रहे हैं। इस फिल्म के एक और गीत की शूटिंग धान के खेतों में होनी थी, जिसमें बहुत कांटे थे, जिस वजह से आशा जी को बहुत दर्द सहना पड़ा, जिसने उनके लिए इस गाने को और कठिन बना दिया था। और वहाँ केवल एक ही वॉशरूम था, इसलिए वह शूटिंग के बाद ही होटल वापस जा सकते थे। इतनी कठिनाई के बाद भी आशा जी ने मुस्कान के साथ इस गाने को शूट किया और हमें मुस्कान के पीछे के दर्द को महसूस ना होने दिया। अब इस गीत के बारे में इतनी बात हो ही गई है तो आपको सुना भी देता हूँ, जो है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, रंग रंग के फूल खिले।

किस्सों का सफर जारी है और गीतों का भी। कहा जाता है इस फिल्म के दौरान आशा पारेख जी को चोट लग गई थी, लेकिन आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि चोट उन्हें इस फिल्म के सेट पर नहीं बल्कि किसी और फिल्म के सेट पर लगी थी, और जब वह वहां से शूट कर इस सेट पर पहुंची तो चोट की वजह से उनसे जूता नहीं पहना गया, जिसके बाद ओम प्रकाश ने उनके एक्सरे जांच की व्यवस्था की और फिल्म के एक दृश्य में काका ने उन्हें उठाया। आप देखेंगे कि वह नंगे पैर और उनका पैर सूजा हुआ है। थी ना यह रोचक जानकारी। अभी और किस्से और गीत बाकी हैं, उसके लिए बने रहे हमारे साथ और सुने लता जी की आवाज में यह गीत तेरे कारण मेरे साजन।

0: आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म का गीत। हम सब जानते हैं राजेश खन्ना जी को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है और वह कितने लोकप्रिय थे। इस फिल्म के एक गाने को छोड़ बाकी सभी गानों की शूटिंग कश्मीर में हुई और उस समय राजेश खन्ना जी को देखने के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और खासकर लड़कियों की, जिस वजह से कभी कभी शूटिंग में देरी हो जाती थी या शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। अब कश्मीर में शूट हुआ एक गीत भी आपको सुना देते हैं किशोर की आवाज में, जवानी ओ दीवानी।
1: यहाँ

आप सुन रहे थे 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। आज हमने बात की है आन मिलो सजना फिल्म के किस्सों के बारे में, और अब चलते हैं इस कार्यक्रम के आखिरी चरण की ओर और आपको सुनाता हूँ एक आखिरी किस्सा। आन मिलो सजना में 6 सुपरहिट गाने थे, जिनमें से ज़्यादातर किशोर जी, लता जी और रफ़ी साहब ने गाए, लेकिन इसमें आशा जी के खाते में भी एक गाना आया। यही नहीं, लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी, ओम प्रकाश जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उनके साथ यह पहली फिल्म थी। आमतौर पर ओम प्रकाश जी ने शंकर जय किशन जी के साथ काम किया है, इसी वजह से शंकर जय किशन जैसा अच्छा बनने की जिम्मेदारी पूरी तरह उन पर थी। और लक्ष्मीकांत जी और प्यारे लाल जी कहते हैं यह उनके लिए बहुत सम्मान की बात थी। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा और आपको छोड़े चले जाऊँगा आशा भोंसले जी के गाए हुए इसी फिल्म के नटखट गीत के साथ, पलट मेरी जान। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से, लिखा आरजे सेजल ने, प्रस्तुतकर्ता व रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार, निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: नब्बे आशारिया 0 FM पर सामायन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विविधता के प्रसारण 90.0 MHz पर अम्बाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विविधता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विविधता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विविधता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विविधता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: यो FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी

0: साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली।

0: हमको मेरे नहीं मांगता, हमको लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
1: जहां हम जाएंगे वहीं हम जाएंगे, जहां वो जाएगी

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में।

0: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, Hamsafar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
1: Toichu Bozan, Namat Asharya Sifar, Radio Vitasta, Hamsafar Zindagi Hund.
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत

0: लक्ष्मी एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
0: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं साय 7 बजे।
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 साय 8 बजे।
0: गणपति बप्पा मोरिया।

0: हवाओं में गुली संगीत की तान लाते हैं, हम आपके लिए खुशियों का मकान लाते हैं। सिर्फ नगमे सुनाना मकसद नहीं है हमारा, हम तो लफ्जों में पिरोकर आपकी मुस्कान लाते हैं।
1: रेडियो की ये तरंगे सिर्फ आवाज नहीं पहुंचाती, दिल से दिल के फासलों को पल में मिटाती है। आपकी हर एक फरमाइश हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि ये हमें आपसे और आपको अपनों से मिलाती है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे श्रोताओं का। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे किरणी।
0: और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के सभी चाहने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, घड़ी में बज चुके हैं दिन के 2 बजे और आज है शुक्रवार और हम लेकर आए हैं आपका अपना मनपसंद शो
1: आपकी फरमाइश। भारत जी, मुझे आपकी फरमाइशों की सबसे खास बात ये लगती है कि यहाँ रेडियो वितस्ता के मंच पर हम सिर्फ गाने नहीं बजाते।
0: बिल्कुल सही कहा किरणी जी, गाने तो सिर्फ एक जरिया है, असल में तो हम यहाँ आपकी भावनाएं, आपकी उम्मीदें और आपका असीम प्यार अपने तमाम श्रोताओं तक पहुँचाते हैं।
1: सच में रेडियो की ये अनदेखी तरंगे ही तो है जो फरमाइशों के रूप में हम सभी को एक दूसरे से कसकर जोड़े रखते हैं। ये कार्यक्रम तो सीधे दिल से दिल की राह को जोड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत माध्यम है।
0: और सच बताऊं तो दोस्तों, हमें हर पल आपकी फरमाइशों का बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारी पूरी टीम हमेशा इस बात के लिए उत्सुक रहती है कि कब आपकी पसंद का गाना हम बजाएं, आपके संदेश पढ़े और आपके अपनों तक आपकी भावनाएं पहुंचाए।
1: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, जहां आपकी एक फरमाइश बन जाती है किसी और के चेहरे की मुस्कान। रेडियो वितस्ता की ये तरंगे जो जोड़े दिल से दिल की राह, सिर्फ आपकी फरमाइश पर। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, क्योंकि ये शो है सिर्फ और सिर्फ आपका।
0: शुरू का सफर और आपका साथ, आपकी फरमाइश मैं आज फिर होगी सीधे आपके दिल की बात। आपकी भावनाएं, आपकी उम्मीदें और आपका प्यार हमें लाते हैं सीधे आपके दिल तक 90.0 FM पर। संगीत का असली मजा आपके अपनों के नाम। सुनते रहिए आपकी फरमाइश सिर्फ रेडियो वितस्ता 90.0 MHz पर।
1: तो फिर देर किस बात की, दिल के तार छेड़िए, अपनी पसंद के गीतों को सुनने के लिए तैयार रहिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की फरमाइशों का ये सुहाना सफर। पहली फरमाइश आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता हैं बंशीलाल संधू, कबीर संधू, जसबीर संधू, वरनीत कौर संधू, पवनीत कौर संधू और सारा संधू परिवार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म इज्जत का गाना, जिसके बोल है ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, और इस गाने को अपनी खूबसूरत आवाज में सजाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। लीजिए पेश है इनका पसंदीदा नगमा।

श्रोताओं लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है पीएस नाहवकर, ये सुनना चाहते हैं फिल्म जानवर से गीत। गीत के बोल है मेरी मोहब्बत जमा रहेगी। इस गीत को अपनी सुरों से सजाया है मोहम्मद रफी ने। पीएस नाहवकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर और साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान दाइडे, आशीष मुरहेकर। आइए सुनते हैं इन सभी का ये मनपसंद गीत।

रेडियो की सुरीली तरंगों पर अगली फरमाइश हमारे पास आई है महेश नगर अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है मंगत राम। ये सुनना चाहते हैं फिल्म काजल का गीत, जिसके बोल है छू लेने दे नाजुक होठों को, और इस गाने को अपनी आवाज में सजाया है मोहम्मद रफी ने। लीजिए पेश है इन श्रोता का ये पसंदीदा गीत।

श्रोताओं प्रस्तुत करता हूँ अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है चंद्रू नगर भवियाल अम्बाला छावनी से। भेजने वाले श्रोता है मदन गोपाल सैनी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म कागज की नाव से गीत। गीत के बोल है हर जन्म में हमारा मिलन। इस गीत को आवाज दी है मनहर उदास और आशा भोसले ने। आइए प्रस्तुत है इनका ये पसंदीदा नगमा।

संगीत के इस खूबसूरत सफर में अगली फरमाइश है फिल्म नाइट इन लंदन के गीत की, जिसके बोल हैं, बाग में फूल किसने खिलाए हैं, और इस गाने को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। और इस गाने की हमारे पास फरमाइश आई है धनोरी तेली वाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। लीजिए पेश है इनका ये पसंदीदा गीत।

जी हाँ दोस्तों, लेते हैं अगली फरमाइश। और हमारे पास अगली फरमाइश आई है गांव कुम्हारेड़ा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले श्रोता है सईद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सोनी महिवाल से गीत। गीत के बोल है बोल दो मीठे बोल सोनिए। इस गीत को आवाज दी है शब्बीर कुमार और आशा भोसले ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये मनपसंद फरमाइशी गीत।

चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो हमारे पास आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म आशा का गीत जिसके बोल है जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं। इस गाने को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। लीजिए पेश है ये खास फरमाइश।

दोस्तों आपको सुनाते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव जुगुड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता हैं रणधीर बांगड़। ये सुनना चाहते हैं फिल्म ब्लैक मेल से गीत। गीत के बोल है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार ने। रणधीर बांगड़ के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम और वीरेन। आइए सुनते हैं इनका ये पसंदीदा नगमा।

0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है अनोखी अदा फिल्म का गीत जिसके बोल है हाल क्या है दिलों का। इस गाने को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने और ये फरमाइश हमारे पास आई है अंबाला कैंट दयालबाग से और भेजने वाले श्रोता है हनी और अनिल। लीजिए पेश है इनकी पसंदीदा फरमाइश।
1: हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आप

आपने ट्यूनिंग किया है एफ एम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां हम बजाते हैं वो गाने जिसकी फरमाइश आप करते हैं। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी अपनी किसी भी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत, हरियाणवी या पंजाबी गीत की फरमाइश कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर। आपको लिखना होगा अपना नाम, अपने दोस्तों का नाम और गीत के बोल। हमारे स्टूडियो का नंबर आप नोट करें 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही लेते हैं हम एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है अंबाला छावनी से। भेजे वाली श्रोता हैं अमिता बत्रा, शनाया और तनुष, ये तीनों अपनी माँ मिसेज सुदेश बत्रा को एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं जो फिल्म चिराग से है। गीत के बोल है तेरी आंखों के सिवा। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं ये फरमाइशी गीत।

अगली फरमाइश आई है हमारे पास फिल्म प्रेम पर्वत से। गाने के बोल है ये दिल और उनकी निगाहों के साए, और गाने को अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर ने। इस गाने को पसंद करने वाले श्रोता है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। लीजिए पेश है इन सब का पसंदीदा गीत।

0: श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। लेते हैं आज के आपकी फरमाइश कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश, जो हमारे पास आई है समस्तीपुर बिहार से। भेजने वाली सखियां हैं मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से, सोनम सिंह और अनामिका सिंह। ये सभी सखियां सुनना चाहती है फिल्म कामचोर से गीत। गीत के बोल है, तुझ संग प्रीत लगाई है सजना। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है स्वर कोकिला लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। साथ ही इन्होंने विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी बधाई भेजी है हमारी ओर से आपको और सभी श्रोताओं को। विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी बधाई।
1: दोस्तों, आपकी पसंद के सुरों के सजी ये सुरीली महफिल अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। आज आपकी फरमाइशों ने इस शाम को सचमुच बेहद खास और यादगार बना दिया। वक्त तो रेत की तरह हाथों से फिसल ही जाता है, पर आपकी पसंद के ये नगमे हवाओं में अपनी मिठास छोड़ जाते हैं। चलते चलते आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम बस यही दो पंक्तियाँ। सुरों का ये सफर यूं ही सुहाना रहे, हर पल आपके होठों पर कोई नगमा पुराना रहे। मिलेंगे फिर नई फरमाइशों की मिठास लेकर, तब तक हर लम्हा आपकी जिंदगी में मुस्कुराता रहे। अब अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाजत। मुस्कुराते रहे, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहे आपका अपना पसंदीदा रेडियो FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।
0: और श्रोताओं, मेरा भी बहुत सारा प्यार, और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज

0: सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है, और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तू लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है, और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र, 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुले आम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफ़र जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। आज हम लाए हैं आपके लिए एपिसोड 3। इसका शीर्षक है हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक। जल जीवन मिशन, हर घर जल, समझो भी अपनाओ भी। जल जीवन मिशन और उसके सभी घटकों को समुदाय को सरल भाषा में समझाने पर केंद्रित है ये कार्यक्रम।
1: बिन जल ये जग जाएगा।
0: अरे पता नहीं स्वच्छ का कहां रह गई, इतना लेट तो वो कभी भी नहीं होती थी। लगता है आज मुझे अकेले ही ये कार्यक्रम करना पड़ेगा।
2: रुको रुको सुजल, आ गई मैं।
0: अरे आ गई तुम, मुझे लगा कहीं पानी भरने तो नहीं चली गई।
2: पानी भरने? नहीं नहीं सुजल, कुएं हैंडपंप पर जाना हुआ बीता हुआ कल, अब तो है हमारे घरों में नल से जल।
0: हाँ सही कह रही हो तुम, पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है।
2: मुझे आज भी याद है कि कैसे मेरे गांव में महिलाएं, बच्चियां और लोग सुबह से पानी के इंतजाम में लगे रहते थे ताकि बाकी काम समय पर पूरे हो सके।
0: सही कह रही हो, कितनी बार तो उन्हें दिन में दो दो चक्कर लगाने पड़ते थे ताकि पानी कम न पड़ जाए।
2: और बच्चियों की पढ़ाई भी छोड़ जाती थी। यही नहीं, गंदे पानी के सेवन से बीमार होना तो आम बात हो गई थी।
0: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
2: सोचू मैं सोचू तेरा रंग कैसा।
0: वाह स्वच्छ का, ये तो नया गाना बन गया।
2: सुजल महाशय, गाने का समय खत्म, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए।
0: ओ हाँ हाँ, आप सभी को सुजल का
2: और स्वच्छता का नमस्कार।
0: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम प्रस्तुत है
2: स्वच्छ सुजल गाँव की कहानी रेडियो की जुबानी।
3: उठा लो अपने हाथ, अंकल हो या आंटी सब आ जाओ अब साथ।
4: बचाना है पानी ये सबको रखना याद, खत्म हुआ एक बार न मिलेगा उसके बाद।
3: सब जानते हैं पानी कितना जरूरी है, इसको बचाना भी तो अपनी मजबूरी है, अपनी मजबूरी है।
4: छोटे बनकर पानी गिराना थोड़ा कम कर, पहले पेड़ लगाओ फिर नदी बचाओ, बारिश के पानी को सब जमा कराओ। सबसे पूछो अंकल
3: रेन वाटर हार्वेस्ट करा क्या?
4: नहीं करा है तो फिर क्यों खड़ा है?
3: आने वाला कल होगा अपना ब्राइट, बोलेंगे सब बात है मेरी राइट, फिर पानी पे ना होगी कभी फाइट, पानी होगा हर टाइम दिन हो या नाइट।
4: हाँ हाँ छोटे, दिन हो या नाइट,
3: सब सुनो मेरी बात।
5: रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बारिश के पानी को बचा कर उसे पौधों के लिए, सफाई के लिए और बाकी सब कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जन शक्ति नहीं जल शक्ति, जय हिंद।
2: सुजल, जल जीवन मिशन ने समय बदल दिया है। जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इसके तहत हर घर जल कार्यक्रम ने देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाना शुरू कर दिया है।
0: हाँ, अब महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों को पानी ढोने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता।
2: लेकिन ये सब आसान नहीं था। कई लोग सोचते हैं कि जल जीवन मिशन बस पाइप बिछाने का काम है, जबकि सच्चाई ये है कि ये हर परिवार के लिए रोज साफ, सुरक्षित और पर्याप्त पानी पहुंचाने का संकल्प है।
0: जो पानी आज नल में दिख रहा है वो अपने आप नहीं आया, इसके पीछे पूरे देश की मेहनत और लोगों की भागीदारी है। अब जल जीवन मिशन 2.0 के तहत इससे 2028 तक बढ़ाया गया है ताकि हर घर तक पानी पहुंचे और हर गांव में जल योजनाओं का बेहतर संचालन, रखरखाव और सतत सेवा सुनिश्चित की जा सके। राहें खुद ब खुद बनेंगी, तुम बस कदम बढ़ाते चलो। होगा हर काम आसान, तुम मन में अलख जगाते चलो।
2: सही कहा, होगा आसान हर वो काम जो अब तक तुमको भारी था। जीत उसी की होती है जिसकी पूरी तैयारी थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश ने हर मुश्किल में काम किया, कहीं रेगिस्तान की गर्मी में, कहीं पहाड़ों में। आज हर घर और हर बस्ती तक नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है।
0: अरे क्या हुआ?
2: ये सब सुनकर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाए। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, देश की लाखों महिलाओं और बच्चियों के सिर से आज पानी ढोने का बोझ उतर गया है। अच्छा, नल से जल मिलने के बाद हमारे गाँव में और क्या बदलाव आया?
0: पहले पानी पी लूं, फिर बताता हूँ। देखो स्वच्छ का सिर्फ पानी ही नहीं आया, गाँव के लोग भी इस योजना से जुड़े हैं। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से लोग मिलकर इससे संभाल रहे हैं और हमारी माताएं बहनें इसमें आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
2: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, ये क्या होता है, जरा अच्छे से समझाओ ना।
0: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति के लोग, जिनका गठन हर गांव में होता है और इस समिति में आदि महिलाओं का होना जरूरी होता है।
2: पर इनका कार्य क्या होता है?
0: चलो ये भी बता देता हूँ। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति का काम है ये सुनिश्चित करना कि गांव में पानी की सप्लाई ठीक से चलती रहे। नल जल मित्र ऑपरेटर की मदद से मोटर, पाइपलाइन और टंकी का रखरखाव कराया जाए, लीकेज ठीक किए जाएं, पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच हो और हाँ, पानी के इस्तेमाल के लिए जो शुल्क है उसके लिए लोगों को जागरूक करना।
2: बाप रे, ये सब वो गांव वाले खुद करेंगे?
0: अरे नहीं, ये सब करने के लिए पंचायत उनकी मदद करती है, साथ में वे कुछ कार्यों को करने के लिए स्व सहायता समूह की दीदी की भी मदद ले सकते हैं।
2: अच्छा, और पंचायत सत्र पर सरपंच, प्रधान, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि के क्या काम होते हैं?
0: पंचायत स्तर पर सरपंच, प्रधान, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि पानी समिति के साथ मिलकर योजना का रखरखाव करते हैं ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।
2: अरे वाह, अब समुदाय की भूमिका भी बता दो सुजल कुमार।
0: सच का समुदाय सबसे अहम कड़ी है, उनके साथ के बिना किसी भी योजना का रखरखाव और उसकी सततता कायम रखना बहुत मुश्किल है। इस योजना के लिए समुदाय और हर व्यक्ति का कर्तव्य है पानी समिति एवं पंचायत के साथ मिलकर कार्य करना। दूसरा, समय पर जल सेवा शुल्क देना। तीसरा, पानी बर्बाद न करना। चौथा, पानी के स्रोत की रक्षा करना एवं इससे बनाए रखने के लिए जल के पुनः भरण यानी रिचार्ज पर कार्य करना। और आखिरी, शिकायत छिपानी नहीं, तुरंत बताना और सरकार के साथ मिलकर समाधान भी ढूंढना।
2: जब हर व्यक्ति कहे ये योजना मेरी है, तभी योजना टिकाऊ होती है।
0: और इसलिए अब योजनाओं की जानकारी जैसे पानी की आपूर्ति, गुणवत्ता और रखरखाव को सार्वजनिक करने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति जानकारी के आधार पर अपनी भूमिका निभा सके।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है, पर योजना में कुछ खराबी भी आती होगी, उसे कैसे ठीक करते हैं?
0: ऐसी स्थिति में ग्रामीण अपने गांव के सरपंच या पानी समिति के सदस्यों को बता सकते हैं। इससे चलाने के लिए एक ऑपरेटर भी होता है जिसे हम नल जल मित्र कहते हैं, वो भी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। बड़ी समस्या के लिए जिले स्तर पर स्थित DTU से संपर्क, उनसे मदद ली जा सकती है।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: इस मिशन ने अब तक क्या क्या प्रगति की है और जल जीवन मिशन 2.0 में क्या खास है, हमें बताएंगे श्री कमल किशोर सोन, जो जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक है। चलिए उनको सुनते हैं।
6: नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के माध्यम से आप सभी से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चूंकि आज का यह एपिसोड जल जीवन मिशन पर केंद्रित है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। साथियों, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर घर तक और गांव के आंगनवाड़ी व स्कूल जैसे संस्थानों तक पाइपलाइन के माध्यम से नल से साफ और सुरक्षित पीने का पानी पहुंचे। पिछले कुछ वर्षों में हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं। आज मिशन उस चरण में पहुंच चुका है जहां कई गांवों और पंचायतों में योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अब उनका संचालन और रखरखाव सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसी क्रम में मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन का दूसरा चरण लागू हो चुका है, जिसके अंतर्गत मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इस नए चरण में जल जीवन मिशन अब नए सुधारों के साथ संचालित हो रहा है। अब हमारा ध्यान सिर्फ हर घर तक नल से जल पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह सेवा नियमित, सुरक्षित और लंबे समय तक सतत रूप से बनी रहे। इसके लिए गांव के लोगों की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है। जल सेवा आकलन के माध्यम से गांव के लोग खुद अपनी योजना की समीक्षा करते हैं एवं पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता और सेवा की स्थिति को समझते हैं। इसके बाद जिला स्तर की तकनीकी टीम यानी DTU डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल यूनिट की मदद से सेवा में सुधार की योजना तैयार करती है। DTU पंचायतों को रखरखाव एवं मरम्मत के कार्यों में भी मदद करता है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत जन भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु संवाद कार्यक्रम के माध्यम से दो स्तरों पर सीख और अनुभव साझा किए जा रहे हैं। सुजल ग्राम पेयजल संवाद में ग्राम और ग्राम पंचायत अपनी अच्छी पहल और उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर तक साझा करते हैं, जिससे उन्हें पहचान मिलती है, उनके कार्यों को सराहा जाता है और देश के दूसरे गांव भी उनसे सीखते हैं। वहीं DC और DM पेयजल संवाद एक ऐसा मंच है जहां जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करता है, जिससे पेयजल से जुड़े प्रभावी समाधान और श्रेष्ठ कार्य पूरे जिले के साथ साथ अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचते हैं। वहीं DC DM पेयजल संवाद में जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करते हैं, जिससे पेयजल संबंधित जरूरी समाधान और बेहतर कार्यों को पूरे जिले और अन्य स्थानों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, जल जीवन मिशन केवल पाइप और टंकी लगाने की योजना नहीं है, बल्कि यह जन भागीदारी पर आधारित एक जन आंदोलन है। जब गांव खुद अपनी जल व्यवस्था को समझकर संभालता है, तभी यह लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। इसलिए जल स्रोतों की सुरक्षा, गुणवत्ता बनाए रखना और समुदाय की भागीदारी इस मिशन के प्रमुख आधार हैं, ताकि पानी आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित बना रहे।
0: स्वच्छ का जैसे मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने बताया, जल जीवन मिशन 2.0 में कई सुधार लाए गए हैं, जिनसे पानी की सेवा को नियमित, टिकाऊ और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सोचो, अभी तो देश के 15 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल आ रहा है। जब देश के सारे घरों में नल से जल आने लगेगा, वो भी नियमित स्तर, तो लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना?
2: हाँ, लेकिन जो जल नल से आएगा, उसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सब गांव वालों को ही तो निभानी होगी, ताकि कोई बीमार ना पड़े। कौन हंसा सुजल, तुमने सुना?
0: ये वही है दुष्का, तुम्हारी बातें सुनकर हंस रही है।
2: मैंने कोई मजाक की बात कही क्या?
0: अभी अभी तुमने क्या कहा?
2: क्या कहा?
0: यही कि जल को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लोगों की भी होगी।
2: तुम बार बार हंस क्यों रही हो?
7: तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही हूँ। अगर तुम लोगों को साफ पानी की परख होती, उसका महत्व पता होता, तो मैं कब की यहाँ से दूर जा चुकी होती। तुम लोग सोचते हो कि बस पानी आएगा तो सब ठीक, अगर पानी गंदा हो जाए तो बीमारी, अस्पताल, सब मेरी वजह से होगा। मैं दूषिका, पानी प्रदूषण की रानी।
0: ओ पानी प्रदूषण की रानी, अब तुम्हारा दौर खत्म।
2: इस बार हम तेरी एक नहीं चलने देंगे।
0: हमने ठान लिया है लोगों को साफ पानी का महत्व भी बताएंगे।
7: तो क्या अब तक लोगों के घर पानी नहीं आता था? ऐसा क्या बदलाव आ गया है?
0: हाँ हाँ बिल्कुल आता था, लेकिन जल जीवन मिशन में ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर पेयजल स्कीम में स्रोत से आने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए डिसइंफेक्शन यूनिट और वाटर ट्रीटमेंट प्लान की व्यवस्था हो। क्लोरिनेशन, फिल्टरिंग और अन्य ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं के माध्यम से साफ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति हो सके।
7: पर पानी तो बाद में भी गंदा हो सकता है, इससे लोगों को कैसे पता चलेगा?
0: तुम्हें पता नहीं है, जल जीवन मिशन में पानी की गुणवत्ता की जांच बहुत जरूरी हिस्सा है। तुम्हें पता है इसके लिए हर गांव में 5 महिलाओं और दीदियों को फील्ड ट्रेनिंग किट यानी FTK से पानी की गुणवत्ता की जांच करना सिखाया जाता है। जरूरत पड़ने पर सैंपल या नमूना को लैब में भेजकर सत्यापित किया जाता है। जल जीवन मिशन के नए चरण में ऐसे महिला दीदी समूह को अब सुजलाम शक्ति का नाम दिया गया है।
7: सचिका मैडम और सुजल भाई साहब, लोग तुमसे ज्यादा मेरी बात मानते हैं। तुम लोग तो उन्हें कठिन कठिन टास्क देते हो, ये धो वो साफ करो, ऐसा रखो वैसा रखो। मैं उन्हें कहती हूँ छोड़ो हटाओ फेंको रहने दो, कोई चिंता मत करो।
2: लेकिन अब सब हमारी बात सुनेंगे। हम लोगों को बता रहे हैं कि अपनी छोटी छोटी आदतों से हम पानी के स्रोत को साफ रख सकते हैं,
0: क्योंकि शुद्ध पेयजल हमें बीमारियों से बचाता है, बच्चों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है और घर का खर्च भी कम करता है। जब परिवार स्वस्थ रहता है तो दवा और इलाज पर होने वाला खर्च बचता है, जिससे पैसे बच्चों की पढ़ाई, पोषण और घर की जरूरतों पर खर्च किए जा सकते हैं। इसलिए दुष्का महोदया, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो।
7: ओह, ये जल जीवन मिशन तो सबको जागरूक बना रहा है। कोई बात नहीं, अभी जा रही हूँ लेकिन फिर आऊंगी। जिस गांव के लोग कमजोर पड़ेंगे वहाँ फिर पहुँच जाऊंगी मैं, देखना वो जरूर मुझे मौका देंगे।
0: जाओ जाओ, तुम्हारी अब कोई जगह नहीं।
8: चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, सच सुजल गांव की एक अनोखी कहानी।
9: हम पानी बना नहीं सकते, सिर्फ बचा सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, पानी चाहिए तो उसे बचाइए। लीकेज रोकें, पानी बचाएं। क्या आप जानते हैं मामूली लीकेज से ही हर महीने 1,000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। यदि एक नल से हर मिनट 45 बूंद पानी टपकता है तो 3 घंटे में 1 लीटर से ज्यादा पानी बह जाता है। पानी की हर बूंद मायने रखती है। जल बचाएं, भविष्य बनाएं।
10: स्वच्छ सुजल यही है भारत का नारा न्यारा।
11: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
2: सुजल, क्या सचमुच लोग हमसे ज्यादा दुष्कर की बात मानते हैं?
0: नहीं स्वच्छका, थोड़ी सी लापरवाही और आलस के कारण हम अपने पानी के स्रोतों को गंदा कर लेते हैं और दुष्का की जीत हो जाती है।
2: अच्छा, तुमने बताया था कि जल जीवन मिशन में निर्माण के समय मुख्यतः सरकार और विभाग काम करते हैं समुदाय के साथ मिलकर, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद ये योजना चलाने की जिम्मेदारी गाँव के लोग कैसे संभालेंगे? योजना समुदाय पंचायत को कैसे और कब दी जाएगी?
0: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निर्माण पूरा होने के बाद कुछ दिन स्कीम को जांचने के लिए ट्रायल रन किया जाता है ताकि उसमें कोई कमी ना रह जाए। इसे कमीशनिंग कहते हैं। सब कुछ सही पाने के बाद गांव स्तर की योजना को पंचायत व समुदाय को सौंप दी जाती है और ये करने के लिए सरकार समुदाय के साथ मिलकर इस अवसर को जल अर्पण दिवस के रूप में मनाती है। ये ट्रायल रन कम से कम 15 दिन का होना जरूरी है।
2: जल अर्पण दिवस, बड़ा प्यारा नाम है, इसका मतलब क्या है?
0: ये जानकारी हमें जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन दे रहे हैं।
6: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। चलिए आज के इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि जल अर्पण दिवस क्या है। 73वें संविधान संशोधन और जन भागीदारी की भावना के अनुरूप जल जीवन मिशन में जब कोई जल आपूर्ति योजना पूरी होती है तो उसे संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत और समुदाय को सौंपा जाता है। इसी जिम्मेदारी को उत्सव के रूप में स्वीकार करने के लिए जल अर्पण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जल अर्पण दिवस उस गांव के लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है जब सरकार और विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनी ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजनाओं को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय को सौंपते हैं। इस दिन गांव का समुदाय अपनी जल व्यवस्था को गर्व, जिम्मेदारी और अपनापन के साथ स्वीकार करता है और उसे संभालने व सुरक्षित रखने का सामूहिक संकल्प लेता है।
0: जल अर्पण दिवस क्या अब समझ में आ गया? ये जानकारी जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने दी थी।
2: हाँ बिल्कुल, इस दिन का संदेश ये है कि अब पानी सिर्फ सरकार की योजना नहीं, ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है। नंबर दो, सब मिलकर इसकी देखभाल करेंगे आज, कल और आने वाले वर्षों तक। लेकिन ये बताओ, ये कैसे जांचेंगे कि योजना अब हैंडओवर के लिए तैयार है? क्या क्या करना होगा?
0: योजना को गांव को सौंपने से पहले ये देखा जाता है कि पानी समिति बनी है या नहीं, क्या योजना को कुछ दिन चलाकर जांचा गया है, पानी सही है या नहीं, इसकी जांच हो चुकी है, नल जल मित्र और समिति को काम की जानकारी दी गई है, पूरे सिस्टम की जमीनी जांच हो गई है और सब जानकारी गांव में खुले में लगाई गई है। जल चौपाल करके गांव वालों को जोड़ा गया है और जल स्रोतों की सफाई भी हो चुकी है। जब ये सब पूरा होता है तभी योजना गांव को सौंपी जाती है।
2: अरे वाह, ये तो बताओ इसे कैसे मनाएंगे?
0: इससे एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। इससे हम अपनी स्थानीय लोक परंपरा के हिसाब से मना सकते हैं। पहला, सोर्स टू टैप समुदाय के साथ मिलकर ट्रंसेक्ट वॉक यानी जल परिक्रमा की जाए। दूसरा, गांव के स्कीम का नक्शा और जल गुणवत्ता रिपोर्ट सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित की जाए और जल योजना संरचनाओं पर हम पवित्र धागा बांधकर, जल बंधन धागा बांधकर सुरक्षा का संकल्प हम अपने योजना एवं जल स्रोत की रक्षा करेंगे। साथ में जल संरक्षण की आदतों को अपनाएं एवं उपाय भी करेंगे। और आखिरी, इसी दिन योजना से जुड़ी सारे दस्तावेज पंचायत को हैंडओवर भी किए जाएंगे। ये ध्यान रहे, इसे अपने स्थानीय संस्कृति के अनुसार मनाया जाए। इस दिन हर गांव को अपने माननीय सांसद एवं स्थानीय मंत्री, अन्य जन प्रतिनिधियों एवं प्रवासी ग्रामीणों को जरूर बुलाना चाहिए। इसके अलावा अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम जल उत्सव भी मना रहे हैं।
2: जल उत्सव? ये जल उत्सव आकर है क्या?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जल उत्सव को 3 स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है ताकि हर व्यक्ति उससे जुड़ सके।
2: 3 सत्र? जरा आसान भाषा में समझाओ ना।
0: हाँ बिल्कुल। सबसे पहला, राष्ट्रीय स्तर का जल महोत्सव। ये हर साल 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से 22 मार्च विश्व जल दिवस तक मनाया जाता है।
2: अच्छा, यानी पूरे देश में एक साथ पानी को लेकर जागरूकता और भागीदारी का माहौल बने।
0: बिल्कुल सही। इसमें देश भर में कार्यक्रम, संवाद, सम्मान समारोह और जन भागीदारी के आयोजन होते हैं ताकि पानी को लेकर सामूहिक जन जागरूकता का माहौल बने।
2: और दूसरा सत्र कौन सा है?
0: दूसरा है राज्य स्तर का राज्य जल उत्सव यानी नदी उत्सव। इसमें हर राज्य अपनी नदियों, जल परंपराओं और स्थानीय संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करता है।
2: मतलब हर राज्य अपने हिसाब से अपनी पहचान के साथ जल उत्सव मनाता है।
0: हाँ, जैसे कहीं नदी के किनारे कार्यक्रम, कहीं जल संरक्षण अभियान, तो कहीं स्थानीय त्योहारों के साथ इससे जोड़ा जाता है।
2: और तीसरा सत्र?
0: तीसरा और सबसे अहम है गांव एवं पंचायत सत्र का लोक जल उत्सव।
2: ये तो सबसे जरूरी है क्योंकि असली काम तो गांव में ही होता है।
0: सही कहा, ऐसे जल उत्सव में जल चौपाल भी होती है। गांव के लोग मिलकर अपनी जल योजना की समीक्षा करते हैं और यदि कोई कमी हो तो उससे ठीक कर अपनी सेवा को और बेहतर बनाते हैं। पानी के स्रोतों की सफाई की जाती है और सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि योजना को टिकाऊ बनाएंगे।
2: मतलब देश से लेकर गांव तक हर सत्र पर पानी को एक उत्सव, एक जिम्मेदारी और एक जन भागीदारी के रूप में जोड़ा गया है।
0: बिल्कुल, जल उत्सव का मतलब सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि ये है जन भागीदारी से जल की जिम्मेदारी।
2: बिल्कुल, और हमने इसके लिए जल अर्पण दिवस के दौरान सम्मिलित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी और राजगढ़ के सांसद श्री रोडमल नगर जी के साथ बात की। आइए जानिए क्या कहते हैं इनके बारे में।
12: धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी, धन्यवाद जल शक्ति मंत्रालय सी आर पाटिल साहब, धन्यवाद पूज्य योगी महाराज। एक ऐसी सोच जो मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ बिकॉज मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ। पानी जो आने वाले समय पे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा धरती पर, अब उसको बचाना, उसको संजो करके रखना और वहां पर पानी की व्यवस्था, हर घर में नल से जल देने की व्यवस्था, ये बहुत बड़ी सोच थी। ये इम्पॉसिबल जैसा था, इम्पॉसिबल जैसा, लेकिन मैंने इसको पॉसिबल होते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में देखा। 2,25,000 लीटर की टंकी लगी, ऑटो मशीन पर पानी हर घर में आ रहा है, कितनी खुशी थी। ये खुशी का कोई मापदंड नहीं।
13: जल जीवन मिशन का जो काम है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है हर घर नल से जल, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहना करता हूँ, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और राजगढ़ जिले में भी 1331 के लगभग गांव ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन्होंने लिए हैं। ये ठीक है कुछ व्यवधान रहे, उसकी वजह से कुछ लेट लतीफ हुई है, लेकिन बहुत ही प्रशंसनीय है। कुंडी बे गाँव में तो 24x7 24 घंटे नल से जल प्रदाय हो रहा है और वहाँ की जो पद्धति को हमने देखा और वहाँ से जो हमने सीख ली वो भी बड़ी अनुकरणीय है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि नल की टोटी निकाल देते हैं तो पानी व्यर्थ में बहता रहता है, लेकिन कुंडी में ग्राम पंचायत के लोगों की मैं सराहना करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। हर नल में उन्होंने टोटी लगा रखी है और मैं एक दिन गाँव में गया, मैंने टोटी चालू कर दी और लोगों की तरफ देखा तो लोग हंसने लगे। मैंने कहा बस मैं यही चाहता था कि टोटी बंद रहनी चाहिए और ये आप अपनी तरफ से हमारे साथ में खड़े हैं। ये बड़ा ही अच्छा एक वातावरण था, बड़ा अच्छा क्षण था। और अच्छा है जल जीवन मिशन के माध्यम से जैसा कुंडी में हुआ है वैसे अन्य अन्य गाँव भी हो और जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हर घर नल से जल, इसको देने में हम सफल होंगे। जल जीवन मिशन का काम है गांव तक पानी पहुंचाना, लेकिन गांव का वितरण करना है तो ग्राम पंचायत का ही काम है, इसके लिए जन संगठनों को आगे आना पड़ेगा। देखिए जो काम करता है वहां गलतियां होती है, चूक भी होती है, कमियां भी रहती है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का और हम सब आपके साथ हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गोरखपुर के माननीय सांसद और राजगढ़ के सांसद से बात अभी हमने अपनी श्रोताओं को सुनवाई, ये तो बहुत अच्छी बात बताई सुजल। ऐसा लगता है कि जल अर्पण दिवस एवं जल उत्सव संस्कृति और जिम्मेदारी का संगम है। इसके अलावा आओ अब ये जानते हैं कि जल जीवन मिशन में कौन कौन से डिजिटल प्रणालियां विकसित की है। श्री कमल किशोर सोन, जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक।
14: पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय
6: अपनी पेयजल व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकें एवं चला सकें, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियां विकसित की है। उसमें सबसे प्रमुख है पंचायत डैशबोर्ड। पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पंचायत डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके माध्यम से सरपंच और मुखिया जी योजनाओं की प्रगति, बनी हुई जल संरचनाएँ, पानी की गुणवत्ता और प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी देख सकते हैं और अपनी राय व सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है सुजलाम डाटाबेस। इसके माध्यम से हर पाइप पेयजल योजना की जानकारी स्रोत से लेकर नल तक एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जल आपूर्ति योजना और प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट पहचान यानी सुजल गांव आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे योजना की निगरानी, प्रबंधन और सेवा वितरण को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके। इसके माध्यम से आप अपने गांव की पेयजल योजना की जानकारी जल स्रोत से लेकर नल तक योजना के सभी घटकों को देख पाएंगे। योजना से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियां भी इसमें उपलब्ध होंगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम निर्णय सहयोग प्रणाली कहते हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पानी रहेगा तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। हर योजना का भविष्य उसके जल स्रोत की सुरक्षा पर निर्भर करता है। यह प्रणाली हमारे परंपरागत स्थानीय ज्ञान, जो सदियों से जल के साथ हमारे अनुभव से विकसित हुआ है, को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ती है। इस समन्वय से हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिससे हम अपने जल स्रोतों को रिचार्ज कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रह सकते हैं, ताकि आज नल तक पहुंचने वाला पानी कल और आने वाली पीढ़ियों तक भी बना रहे।
14: तैयारी पक्की, जिम्मेदारी सबकी। हम पानी बचाएंगे, योजना चलाएंगे, गांव का जल भविष्य बनाएंगे।
7: मैं आज समझ गई, सबसे ताकतवर गांव वो है जो पानी की रक्षा करता है। अब मेरा क्या होगा?
6: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। साथियों, ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले टाइड ग्रांट जल एवं स्वच्छता के कार्यों के लिए निर्धारित है। इस राशि का उपयोग गांव की पेयजल योजनाओं की देखभाल, मरम्मति, जल गुणवत्ता जांच, जल संरक्षण और लोक जल उत्सव, जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे गतिविधियों में किया जा सकता है। इससे पेयजल योजनाएं लंबे समय तक सुचारू रूप से चलती रहेंगी और ग्राम पंचायत के सहयोग से लोगों को बेहतर पेयजल सेवा मिलती रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाइप जल आपूर्ति योजना से मिलने वाला साफ और सुरक्षित पीने का पानी केवल सुविधा नहीं है, बल्कि यह बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद है। इससे डायरिया, पीलिया और अन्य जल जनित बीमारियों में कमी आती है, बच्चों और गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य सुधरता है और परिवारों का इलाज पर होने वाला खर्च भी घटता है। स्वस्थ परिवार मतलब कामकाज में कमी नहीं, आमदनी में नुकसान नहीं। इसलिए पाइप नल योजना के माध्यम से मिलने वाला साफ पानी गांव की तरक्की की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, चूँकि मानसून अपने चरम पर है और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वर्षा जल का एक एक बूंद हमें बचाना चाहिए, मेरा सबसे आग्रह है कि पानी का समझदारी से उपयोग करें और बर्बादी से बचें। साथ ही जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के रिचार्ज की तैयारी करें, ताकि हमारे पेयजल स्रोत साल भर टिकाऊ बने रहें। आइए हम सब मिलकर सरकार और समुदाय की साझा जिम्मेदारी निभाएं, अपनी पाइप पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखें, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि हर घर तक सुरक्षित और नियमित पानी पहुंचता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
14: तैयारी पक्की,
2: पिछले अंक के जवाब व श्रोताओं के नाम।
15: पिछले एपिसोड 2 के सवालों के जवाब हमारे पास जिनके आए उनके नाम हैं हरजीत सिंह, सुषमा रानी, अश्विन, ये सभी अम्बाला से हैं। इन सब ने सही जवाब हमें भेजे जिनमें उन्होंने कहा गीला कचरा वेट वेस्ट, हरा डस्टबिन ग्रीन बिन। गीला कचरा वो होता है जो आसानी से गलकर खाद कंपोस्ट बन सकता है, जैसे रसोई का कचरा, सब्जियों और फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, नॉनवेज वेस्ट, अंडे का छिलका, चाय और कॉफी, चाय पत्ती और कॉफी ग्राउंड, बगीचे का कचरा, पौधों की पत्तियां और फूल, गीला कागज, खाने में इस्तेमाल हुआ गीला टिश्यू पेपर या पिज्जा बॉक्स, सूखा कचरा ड्राई वेस्ट, नीला डस्टबिन ब्लू बिन। सूखा कचरा वो होता है जो गलता नहीं है और इसे रिसाइकल किया जा सकता, जैसे प्लास्टिक आइटम्स, प्लास्टिक की बॉटल्स, डिब्बे, कागज और कार्टून, रद्दी अखबार और पैकिंग बॉक्स, कांच यानी ग्लास, कांच की बॉटल या शीशे के टुकड़े, मेटल, कोल्ड ड्रिंक के कैंस, फॉइल पेपर और टीन के डिब्बे, कपड़े और जूते, पुराने कपड़े, जूते या चप्पल। और उन्होंने ये भी बताया कि हमें अपने शौचालय को साफ सुथरा रखने के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग या इस्तेमाल नहीं करते हैं और आसपास स्वच्छता का ख्याल रखते हैं।
2: इस अंक का सवाल, क्या होता है जल अर्पण दिवस, क्या आपके गांव में ये मनाया गया है? अरे सुजल, अगले अंक के बारे में भी तो कुछ बताओ।
0: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन देश के हर गांव को स्वच्छ और एक गांव को ODF प्लस ग्राम बनाने हेतु क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या रहेगी उसकी रणनीति। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सुनिए स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, केवल FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर।
2: अगले अंक तक आप सभी को हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।

आप सुन रहे थे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक, जो जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम है। इसमें सुजल के किरदार को आवाज दी भरत सुपोरी ने, स्वचिका के किरदार को आवाज दी आरजे किरनी ने, दुशिका के किरदार को आवाज दी कृष्णा ने, सहयोग अन्नू का, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन भरत सुपुरी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विविधता की प्रस्तुति।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबाला वासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: गवाही बड़ी। अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

आदाब, नमस्कार। इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रमेश मराठा। तू कहीं और है, तेरा जिक्र मेरे साथ रहे। मैंने तकिए पे तेरा नाम लिख के रखा है।

मेरी उंगली पकड़ता, मुझे अपने साथ ले जाता पत्थरों के शहर में, जहां बरसों पहले मैंने तराशे थे। बोलते मुजस्सम और पत्थरों के खुदा, जिनकी इबादत में हर कोई है मसरूफ, और उठते ही सदा दुआओं में हाथ।

मेरा अतीत मेरी माजी के वो पल जिसमें मैं मिट्टी के खिलौनों से खेलता था, दौड़ता था, भागता था, मस्ता था, पेड़ों की टहनियों से झूला झूलता था। बारिश की बूंदों को अपनी कच्ची मुट्ठी में कैद करता था। सिर्फ एक बार लौटा दे मुझे मेरा बचपन, जो गलतियां हुई अब उनको न दोहराऊंगा, किसी से न रूठ जाऊंगा, किसी को न रूठने दूंगा, किसी से न शिकवा करूंगा और न किसी को शिकायत का मौका दूंगा, मगर मुझे लौटा दो मेरा बचपन, तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में पायल, तुम्हारे नीले दुपट्टे के छांव तले गुनगुनाना चाहूंगा। तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में पायल।

किसकी सूरत अब इस शीशे में उतारूं? टूट गया आईना, टुकड़े टुकड़े हो गया, जुबां बंद हो गई।

नजर खामोश, चारों ओर पसरा है सन्नाटा। शायद फरामोश करना तुम्हारी आदत है, यूं ही पल पल

जुज तुम्हारे दामन में पनाह लिए हुए अभी भी जाविदा है, जिंदा है, जमा है। यकीनन खूबसूरत हो तुम, सिर्फ तुम। कभी यूं भी तो हो, ये नर्म मुलायम हवाएं तुम्हें छू कर गुजरें और तुम आओ, तुम आओ मेरी भूली बिसरी यादों में शामिल तुम हो।

भीगते बरसातों में तुम भीगते रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं, दूर से ही सही तुम्हें निहारता रहूं। चांद भी इन बादलों से चीर के निकल आया है तुम्हें अपनी आगोश में लेने के लिए। गरजते बरसते ये बादल ये हवाएं तुम्हारे गेसों तुम्हारे रुखसार को छूने में हैं मुंतजर। चले आओ अपनी मुस्कुराहटों के संग, यहां खेले लुक्का छुपी और मुस्कुराए इन फिजाओं के साथ साथ।

बोलिए, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्ते।

जय श्रोताओ, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:32। आज का ये प्रसारण अब आपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आशा करते हैं कि वितस्ता की धारा की तरह ही ये प्रसारण भी आपके मन को सुकून दे पाया होगा और आपके दिन को और सुहावना और खुशनुमा बनाया होगा। दोस्तों, आज बात करते हैं एक बेहद जरूरी विषय पर। धैर्य ही हर मुश्किल का सबसे बड़ा समाधान है। जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हमारा सबसे पहले मन करता है कि जल्द से जल्द उससे बाहर निकल जाएं। लेकिन अक्सर जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमें और उलझा देते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है, वही मुश्किल परिस्थिति में भी सही रास्ता खोज पाता है। धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें सोच समझकर शांत मन से निर्णय लेने की क्षमता देता है। प्रकृति भी हमें धैर्य का पाठ पढ़ाता है। एक बीज को वृक्ष बनाने में समय लगता है। नदी को पत्थरों को घिसकर रास्ता बनाने में सदियां लग जाती है, फिर भी वो रुकती नहीं है। ठीक उसी तरह जीवन में सफलता, रिश्ते और सम्मान, ये सब भी धैर्य और निरंतर प्रयास से ही मिलते हैं। जो लोग छोटी छोटी बाधाओं से घबराकर हार मान लेते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहा गया है कि अगर आपका लक्ष्य जो भी है, आप निरंतर उस पर काम करते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, हमने अपने जीवन में ये सीखना होगा कि हर चीज का सही समय होता है। जल्दबाजी और अधीरता केवल तनाव और पछतावे को जन्म देती है, जबकि धैर्य हमें स्थिरता, समझदारी और आत्मविश्वास देता है। इसलिए मुश्किल घड़ी में भी धैर्य ना खोएं, क्योंकि यही धैर्य आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। जी हां दोस्तों, यह था आज का विषय। हर दिन हम आपके साथ किसी खास विषय पर बात करते हैं और साथ ही आपको सुनाता हूं 4 पंक्तियां। आज भी आपके लिए 4 पंक्तियां लाया हूं और आप सभी के नाम ये 4 पंक्तियां। आज की पंक्तियां यूं है, छोटी हो या बड़ी हर लहर की अपनी कहानी है। छोटी हो या बड़ी हर लहर की अपनी कहानी है, वितस्ता के हर कतरे में बसी रवानी है। जो थमे नहीं बस चलता रहे मुश्किल में भी, जो थमे नहीं बस चलता रहे मुश्किल में भी, उसी के हिस्से आती असली जिंदगानी है। उसी के हिस्से आती असली जिंदगानी है। तो दोस्तों, ये थी आज की पंक्तियां आप सभी के नाम। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 19 सितंबर 2026 यानी शनिवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। वंदे मातरम से हम शुरुआत करते हैं, लाते हैं आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत, 7:05 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए। हमारे साथ होंगी कुलविंदर कौर, पेश करेंगे भारत सोपोरी, और 8:30 किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 13। और कल के लिए शीर्षक होगा कारण भी हम निवारण भी हम। 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम मां अनमोल एपिसोड 2, पेश करेंगे भारत सोपोरी, और ये कार्यक्रम सभी माताओं के लिए समर्पित है। 10:00 कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 8, हमारे साथ होंगी मिसेस दीपाली मल्होत्रा। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, और 7:00 होगा कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 5। ये कार्यक्रम आधारित है सीहोर मध्य प्रदेश के धर्मराज देशराज जी की कविताओं और गजलों पर, पेश करेंगे भारत सोपोरी, और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर,
पेश करेंगे रमेश मराठा और कल की कड़ी है रेतीला आशियां। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आशा करता हूं कि कल के कार्यक्रम भी आपको पसंद आएंगे। आप अपना फीडबैक हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। सभी अंबाला वासियों और अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगा, अगर आप अपने अनुभव एक्सपीरियंस से कुछ अंबाला के लोगों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो आप जरूर हमें इसी नंबर पर लिखिए। हम आपको आमंत्रण देंगे, आपकी बात को रिकॉर्ड करेंगे और सभी अंबाला वासियों तक पहुंचाएंगे। ये सारी जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचाई, इसको तैयार किया हमारी टीम रेडियो वितस्ता की कैजुअल अनाउंसर अनु ने। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रसारण पसंद आया होगा और इसने आपके दिन को और खुशनुमा बनाया होगा। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी अब आपसे लेता हूं विदा। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ वितस्ता के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और सुनिए हर दिन रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।